0: σκύλο. Λέω, μα φλότλο μου, το σοκαριά, λέω, κλούπο. Από τα γυάλια, με κυρία Τάντα. Μάλιστα.
1: परंपराओं को तोड़ने का प्रयास क्यों? समग्र समाज को आह्वान देने से क्या लाभ होगा? जानता हूं मैं, सारे समाज की इच्छा मनुष्य की महत्वाकांक्षा को कुचलती है कभी।
2: Алло, или съебывался?
3: Юра, зачем ты это сделал?
4: ไม่ได้ไปท้อไปนะครับต่อไป

0: एक्शन।
1: अरे यार ये सब क्या हो रहा है, पहले हमें दोस्त रानी गई और अब करण। तुम सब दरवाजे लॉक करके सो जाओ, और ये तुम जो भी कर रहा है इसका पता कल सुबह लगेंगे।